0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: समिति हो चौदह के में बोधे लोटी पड़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता खाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिल
3: आई समझो लोटी पड़ती हूँ छापता ही गुदी
2: बढ़ती आ बढ़ती लोटरी खाली पड़ती बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बने वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: sip on the extreme energy drink.
1: 아니, 땅 가게 게임에 치니와 어, 질까이 그 퍼스널 넘버 블록라이 바디 पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर भए अफिस तरी आएर ब्लग लिएर खर्खाई अनि बैंगरी बैंगरी चर्चै तली लल्पर्दी समलपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिया बढेर ब्लग तयाई विषय आफै न ब्याङ्क देवी जानकारी पिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल पर्यम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2